प्रिंसिपल महाशक्ति देवी की जय, उमापति महादेव की जय, पौन पुत्र हनुमान की जय, नवदुर्गा माता की जय, सियावर रामचंद्र की जय, प्रेम और शक्ति से बोलो सत्य सनातन धर्म की जय जय।

ताम श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ॐ श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीभ्यो नमः।

0: प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय सीताराम आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 टू 6 पीएम वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन आवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय.
1: Looking for unbeatable bargains and authentic Indian vibes? Fab India Expo in Trigonus is your spot. Step into Fab India and discover a world of colors, flavors, and fun.

0: प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। सीताराम, आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 to 6 PM वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन आवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
1: Fabinia Expo, your one-stop shop for everything Indian from fashion to food. Experience the magic of India right here in Sugarnagar. Don't just hear about it. Come and live the Fabinia Expo experience.
2: The Maverick is on.
3: Maverick is on.
4: The radio is on. But the music is cool.
5: It's cool.
6: It's cool. It's on here.
4: 24/7 hits.

हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। मेरे द ब्लेसिंग्स ऑफ श्री हनुमान बी अपॉन ऑल ऑफ अस कलेक्टिवली। हनुमान एकादश रुद्र वानर तनु धरि धरि महा हरि पद सेवा जाय। व्हेन श्री राम वाज अबाउट टू डिसेंड एज राजा राम, देन ब्रह्मा इंस्ट्रक्टेड कि वानर तनु धरि धरि महा हरि पद सेवा जाय।